0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
6: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
7: की होया,
6: इत्थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
7: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
6: याद रखो 9077-9733।
7: VY Immigration and Education Consultant,
6: हर कदम तुहाडे नाल।
0: चलदी दा नाम गड्डी, हां ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप, टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tyreforce.com.au।
5: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
8: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड, त्रुगनीना, अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टेक्स एडवाइजर्स, तो हाटे बिजनेस दे भरोसेमंद टेक्स एडवाइजर्स।

0: कुमार क्या, मैं क्या, मैं भी क्या, मैं क्या, ये कहां से निकला? मैडम ने देते 3 पॉइंट अपनी होगी, यस पूरी क्लास च। फिर जो पीरियड खत्म हुआ ना, उन्हें मैं बुलाया, कहते कि तू पार्टिसिपेट नहीं करता बट वेरी गुड, है ना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि 8वीं चो मैडम ने इस तरह किया कि है ना पार्टिसिपेट कराया कर, 8वीं तो ये डिबेट एक्सटेम्पोर हर किसी पार्टिसिपेट करना, तैयारी भी नहीं कर गया, अभी बस बोल आओ कुछ ना कुछ, है ना। फिर टैलेंट हंट होया साडे स्कूल पहली बारी, तो मैडम एक प्ले करा रहे थे बहुत वधिया, साकी एक बहुत मशहूर राइटर है, वह प्ले सेगा सस्पेंस जे, तो मैडम ने कहा तुम भी करो, तो मैं क्या मैम मैं लिखना चाहना, कहते तू लिख तो आई विल हैल्प यू, जे जो जो खराब होया। असी मैं तो मेरे मित्र ने रल के प्ले लिखिया, असी जित गए।
1: अच्छा,
0: तो इन्ना खुश होए तो कह ला कि ये 9वीं की गल है, 10वीं 11वीं 12वीं एनुअल फंक्शन दे प्लेज मैं लिखे उन्हां नाल बैठ के, एंड वह रीत इदा होगी कि आदत पैगी स्टेज की, आदत पैगी परफॉर्म करने की, आदत पैगी बोलन की लिखन की। सो थैंक यू तो उस मैडम भी हो जाता है ना कि जे अज इत्थे बैठ के गलबात कर पा रहे हैं। तो एक वो स्टमक इज अ स्टमक नॉट अ ग्रेवयार्ड का 2 पॉइंट देकर कोई होर शायद टीचर हुंदा कहिंदा वेरी गुड, स्पेशली जे बुलांदा ना, है ना, कि एनकरेज ना करदा ते फिर मे बी, है ना, आई वुडंट बी डूइंग दिस, शायद कुछ होर कर रहे होंदे। सो बहुत छोटी छोटी चीजां होंदी जिस करके। ए मैडम दा नाम सीगा रोहिणी मैम, यस
1: हाय रोहिणी मैम,
0: हाय रोहिणी मैम, शाउट आउट टू यू, वेल डन, है ना। अच्छा हुण मैं जदों मैं लेटेस्ट मिले ना उन्हां नूं, ते क्योंकि थानू तो चेहरा उही याद रहा ना, हूँ मैं मिल रहा 13 या 14 साल बाद, तो मैं सीधे क्या मैम तुम एजड हो गए हो, कहते बेटा लगता मैथ की क्लासिस नहीं लगाई
1: नंबर वादे नहीं
0: उम्र होंगी है एनका लग गई मैडम, हाँ गया 50 पार हो गए बच्चे कि यह सीन है। बाकी लीए एक होर अगला कॉलर लीए जी आप।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अगले कॉलर ने जी साडे नाल रूबी भैन जी।
2: कुछ
0: गलती कर दी फड़ लिया हो सुना।
2: बस वधिया, तुसी दसो?
0: बस वधिया वधिया वधिया, पहुंच गए स्कूल के नहीं पहुंचे?
2: याद कराया, हां मैं ही कह रही हूं, मैं कि बड़ा कुछ याद कराता तुसी ना, अज स्कूल दा नाम लेके, स्कूल स्पेशली स्कूल दे टीचर्स दा लेके।
0: हां दसो थोड़े फेवरेट टीचर बारे।
2: बड़ा वधिया दा सी मेरे फेवरेट टीचर। हां जी, मैं एक्चुअली मैम टीचर्स दी फेवरेट हुंदी सी।
1: हाए अच्छा, ए भी एक है गई स्टूडेंट,
0: पढ़े लिखे वाली बालिका,
1: एक दो बच्चे हुंदे ही जेडे उहनां दे भी फेवरेट ही।
0: ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ
2: ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ।
0: ਨਾਈਸ ਫਲੈਕਸ, ਨਾਈਸ ਫਲੈਕਸ
2: ਪਲੇਅਰ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
0: ਮੋਨੀਟਰ ਬਣ ਕੇ
2: ਮੈਨੂੰ
0: ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਸਟਰ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਯੈਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਰੀਟਰੀ,
2: ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਮ ਤੋਂ, ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਉਧਰਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ ਉਧਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ
1: ਪੂਰੀ ਟੌਰ
2: ਤੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਰਨੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
0: ਕਿਆ ਮਿਕਸਚਰ ਆ
1: ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੀ
0: ਸਿੱਧੇ
1: ਬਾਰਾਂ
0: ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਚ ਨਾ ਆਵੇ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਗਿੱਦੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
2: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ले प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो

0: मस्त चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुण टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
4: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-1516-16, quicksignage.com.au।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हाजी 1674।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो।
0: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
0: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
7: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
8: On Roads Honors Campaign सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 Premium सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 Dynamic FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 Premium सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD On Roads Honors, conditions apply।
9: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
10: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
9: फिर लवाइए किथों?
10: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस को दो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
11: किथे वज गई तेरी गड्डी?
12: गड्डी तो ठीक हो जू,
2: ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
6: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
11: ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 03-8385-7748 ਤੇ। ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
4: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉन स्टील स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी

भाई यार कमाल ही करता है, मेनू लग रहा है रबाब सरंगी हारमोनियम तबला ढोलक अज दे जमाने दे विच और गिटार सॉफ्टवेयर वाले जमाने दे विच आराम साहब जरूर सुनियो तुसी इस गाने नू उना दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो जाके हम दो किनारे दरिया एक दिल दो हमारे धड़कन एक क्या बात है यार बिच स्पेशली जेडे इंस्ट्रूमेंट्स दा जिस तरीके दे नाल इस्तेमाल कीता फेल है हुण अज जो भी होर बाकी जो भी कुछ सुनांगे फेल है पहला ही दस रहे हैं फेल है गल बननी नहीं हैगी हुण पता नहीं कोशिश कर लैने चलो अज दे इस प्रोग्राम नू जारी रखन दी ते ड्राइव बैक शो च

0: रेडियो हाजी 1674
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: शर्ता लागू।
1: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी, टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुआडे नाल।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।

3 सितंबर 2026 दिन वीरवार भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करते हैं। नेपाल हड़ां दे नाल जुड़ी खबर, वैसे अगे चल के आस्ट्रेलिया की खबर भी सांझी करांगे, पर नेपाल की सरकारी एजेंसी के मुताबिक भुटकशी ते त्रिशुली नदियां दे विच 26 अगस्त दे दिन आए भयानक हड़ां तो बाद हुण 8 दिन बाद बुधवार शाम तक 11,993 लोगों नूं बचाया जा चुके है। हालांकि बुधवार शाम तक दे आंकड़ियां दे मुताबिक 4,216 लोगों दे नाल हाले भी कोई संपर्क नहीं हो सकया, यानी कि इन्हां नूं लापता दस्या जा सकदा है। अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश नूं तरजीह दिती जा रही है। नैशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ तो यह भी दस्या गया है कि नेपाल दे विच इन्हां हड़ प्रभावित इलाकों के अंदर नेपाल की फौज, नेपाल की पुलिस और होरना फौजी टुकड़ियां दे घट्टो घट 21,314 कर्मचारियों नूं तैनात करके रख्या होया। खोज ते बचाव कामां दे विच नेपाल पुलिस दे 7,912 और जिहड़ा पुलिस बल जिन्हों के एक किस्म के नाल हथियारां दा पुलिस बल कहा जा सकदा, उन्हां दे कोल 4203 जवान उन्हां दे तैनात किए गए हैं। नेपाल की फौज के 9,999 लगभग 9,200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी नदियां के

0: ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 0490054596 ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ .com.au ਤੇ ਜਾਓ।
1: info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077973
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल।
3: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट वैरवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: अरे आई वाह वाह वाह, क्या गाना, ब्यूटीफुल, मानोगे नहीं,
1: अति सुंदर
0: अति सुंदर। रेडियो हाँ जी 1674 AM ते थोड़ा प्यार भरिया स्वागत। मैं हाँ कृष्णा, मेरे नाल है जी बलकीरत। हाँ जी मेलबर्न दे सैगमेंट दा थानू पता की माहौल चाल है, आप रखना एक विशा ते उस विषय ते करें गलबात। उम्मीद करते हैं थोड़ा अज्ज का दिन जिहड़ा शुरू होया बहुत वधिया वधिया शुरू हो गया होएगा। तुसी अपने कम्मां कारां वल पै गए होंगे, कम्मां कारां वल जिहड़े नहीं पए ने, जिहड़े

0: चीज नो ना।
1: दैट
0: चाहे
1: इज
0: वो
1: स्वीट.
0: पढ़ना चाहे वो, हाँ चाहे वो पढ़ना चाहे वो कोई डांस है या गेम है, आई थिंक जब तुम उससे खौन वाला वो टीचर अच्छा मिल रहा है, आई थिंक यू जस्ट स्टार्ट लविंग दैट गेम
1: इदा ही है,
0: दैट
1: सीख
0: यू आर
1: जाना बंदा.
0: डूइंग। हाँ जी
1: जी.
0: हाँ जी, ओके जी,
1: थैंक यू
0: थैंक
1: जी.
0: यू सो
1: थैंक
0: मच फॉर द
1: यू.
0: योर टाइम,
1: थैंक
0: ओके हैव
1: यू
0: अ
1: सो
0: नाइस
1: मच. हैव अ
0: डे,
1: नाइस डे टू बाबा.
0: यू
1: सो
0: टू,
1: या
0: बाय बाय
1: मैंने याद आ
0: बाय।
1: गया, एक साडी भी मैडम वो भी टार नहीं टी देंदे आ.
2: अच्छा
1: एक
2: वाह,
1: अद्धी रिख दे मैंने मिले भी है,
2: हाँ
1: पर
2: स्कूल वाले
1: ना.
2: हैं।
1: वाह. पर एक यार जिहड़ी अपना रूबी भैन जी ने गल की है ना कि सिखाने का तरीका, मैं हूँ कई मेरी वेखना कि यार हूँ की जिहड़ी जनरेशन है वो लोग किन्ने मतलब इस गलों कह सकते हैं कि लकी है ना, कि किन्ने वधिया तरीके दे टीचर्स आ चुके हैं. मतलब तू यूट्यूब ही वेख ला, मैं बिना गल्लों ही खान सर दे किन्ने लेक्चर सुने हुए हैं कार चलाते हुए, मजा आता है ना. वो विकास दिव्य कीर्ति और फिलोसफी दी साइकोलॉजी दी गल्ला करता, तुसी ढाई ढाई तीन तीन घंटे गल्ला बातें सुन लो, क्या तरीका समझा आता. तो वो फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स ना लेना देना नहीं, आपा जो फिजिक्स वगैरह पढ़े कि वो रट्टा है ना, कि उही सरा ने मैडम ने जिस तरीके ना कहता है ना, वो तो थानू ही पता कि आ सिलेबस है ना, आ 11वीं का 10वीं का सिलेबस है, इन्ने एक सवाल आने वाले पढ़ लेते थे उस हिसाब ने कर लेता. बट नाउ रीजनिंग मैथ के अंदर कि यदा कारण की है, इस तरह हों क्यों है, फिजिक्स के अंदर कारण की, इस तरह हों क्यों है ना, वो सब सिखाते. तो आई बिलीव कि शायद इन्ने ही ज़्यादा वधिया तरीके नाल, या फिर कह लो इन्ने सहज तरीके नाल, जे असीं भी पढ़ रहे होंगे साइंस तो शायद साइंस मज़ेदार लगती है ना.
2: आओ सदा आप उधर नू,
1: हाँ उधर नू हो जाते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग. दुनिया तो बहुत खूबसूरत है ना, तो उस तो रिलेटेड
2: जिहड़ी है भी बहुत कुछ कर,
1: हाँ तो उस तो रिलेटेड ओबियसली जिन्नियां गल्लां होनगियां है ना उन्निया ही वधिया होनगियां, बट
2: अच्छा,
1: जस्ट आपां वो वैल्यू नहीं दे पांदे उन्हां चीज़ां नूं.
2: इस स्कूल वाले भी ना बड़ा प्रिंसिपल ही है, चलो जिहड़े आ वेखदे आ जां वाइस प्रेजिडेंट वगैरह, इह ना बड़े चीज़ां चुण के लियांदे ने कि जे मान लो गेम दे इन्हां नूं लगदा ना भी जिद्दां साडे आ चीज़ दे विच अहीं लैक करन डे आ, फिर उहदे विच चेंज करदे ने कि हाँ कोई होर टीचर लियांदा जावे ते उहनूं मौका दित्ता जावे, वेखिए भी उह की करदा. ते इदां ही ना इन्हां ने की होया कि मैथ सबजैक्ट जिहड़ा मैनूं लगदा कि 80% लोकां नूं जिहड़ा थोड़ा जिहा
1: ओके
2: लगता होगा भी की है यार,
1: हाँ, नहीं सही गल है,
2: जरूरी करना ही पैना यार
1: है
2: ना, दे आपां ते ओ कोई भी नहीं है ना पढ़ के रह जी कि मैथ दे पीरियड दे विच ते हर किसी ने माने मारने मारने, हाले कि चलो केमिस्ट्री च भी बंदा जां फिजिक्स च भी सो सो के कढ़ लैंदा पर मैथ च ते सो मैथ च ते सुत्ता भी नहीं जांदा
1: होंदा, ये तो सोना औखा है,
2: ये च ते ओ क्योंकि एक है ही ओदां दा ना भी आ गया जी है ना, उच्च तो बंदा लीन जहा हो जाता सौ जाता लीन भी नहीं होया जाता कर करके, तो चलो कोई भी नहीं है ना, बड़ा रिजल्ट बड़ा घट गया मैथ का, कंडे कंडे से आ गया तो मैडम होंगे ही पहला, तो मैडम का तो चलो की कसूर है, हम पढ़िया न्याण ने नहीं है ना, पर उन्होंने की किया फिर भी मीटिंग हुई एक है ना, तो बच्चों पूछा गया भी किदा भी तुम मैडम तो कोई मतलब मैडम की समझ नहीं आती कि की चक्कर की है जेडे नंबर नहीं आते, तो किसी ने की कहना सारे मूँह सुट के बैठे उसे पता ही है नहीं आने पल्ले नहीं पैदे की करिए कर करके की डिसीजन लिया भी चलो टीचर नवा हायर कर दे है ना, इनू रिप्लेस कर दे इनू के होर निक्की क्लास कुछ किया उन्होंने वो तो नहीं बाद लब्बे भी कितने गल पर जेड़ा नवा वीर आया भरावा हूँ भी कि सोहनी एक गल आ कि उदो नहीं ही ये चीज का बिल्कुल भी नहीं पता भी किहड़े पॉइंट ऑफ व्यू ना इनू लिया जा की पिछे साइको ही हूँ चीजा की समझ आती है भी की उन्होंने स्ट्रैटेजी की ही पिछे वह की ही कि उन्हें आना भरावा पग उन्हें बनी होनी मतलब होर ही स्टाइल दी अज तक तुम वेखी नहीं होनी मैं फोटो खा दा ना तुम कहना मैं पहली बार आ स्टाइल की पग वेखी मतलब कलरफुल पग बनी होनी उन्हें
1: वाह वाह वाह
2: ते जेडी उन्हें कपड़े पाए होने मतलब चमकीलियां वाले जिदा दलेर मेहंदी वेख्या पूरा दलेर मेहंदी वर्गे कपड़े मतलब हर रोज उन्हें एक वखरा सितारिया वाला कोट पाना कित फुल लगे होने कि ਜਿਹੜਿਆਂ ਉਹ ਪਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਪੂਰਾ
2: ਪੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਬੂਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦੇ
1: ਸਰ ਦੀ ਬਸ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
2: ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸੋ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ
1: ਅੱਛਾ
2: ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਕਸੋ ਡਿੱਗਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
1: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉन स्टील स्ट्रीट डैंडीनॉन्ग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन।
2: की हुआ?
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट।
1: हर कदम तो आड़े नाल।
0: सोना चाहिदा,
3: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट। Delhi Jewelers, 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
4: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tirefors.com.au।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए किथों?
6: सन करंट वालिया कोलो, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: फ्रंटियर ना सही ट्रिब्यून पढ़ो, कलकत्ता नहीं ढाके की गल करो, ऑर्गनाइजर ते पंजाब केसरी दे कातर लियाओ ते मैनू दसो कि इल्लां किधर जा रही ने, कौन मरिया है। समा कोई कुत्ता नहीं कि संगली फड़ के जिधर मर्जी धू लो। तुसी कहंदे हो माओ ये कहंदा है, माओ वो कहंदा है, मैं पुछदा हां माओ कहण वाला कौन है। शब्द गिर भी नहीं, समा गल आप करदा, पल गूंगे नहीं। तुसी रैंबल च बैठो जां प्याला चाह दी रेड़ी तो पियो, सच बोलो जां झूठ कोई फर्क नहीं पैंदा, भावें चुप दी लाश दी छल के भी लंघ जावो। ते ऐ हकूमत, ऐ हकूमत अपनी पुलिस नूं पुछ के ये दस कि सिखां अंदर मैं कैद हाँ जां सिखां तो बाहर ए सिपाही। सच ए आई आर दी रखेल नहीं, समा कोई कुत्ता नहीं। ये लिखत अवतार सिंह पाश होरां दी लिखी हुई है। वैसे वो अवतार सिंह पाश जिन्हां नूं तुसीं बड़े मशहूर काव टोटे असी लड़ांगे साथी, किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल भर जाना आदि आदि होर बहुत सारियां कवितावां दे लई सुनिया जाणिया होएगा। अज गल क्यों करन लगे हैं, प्रोग्राम एक देश पंजाब की गल कीचे दे विच प्रीतम सिंह रुपाल होरां दे नाल सांझ पाने हैं, तो उही दसणगे इस दा बिरतांत। भाई सत श्री अकाल जी। जी हां,
1: सत श्री अकाल गौतम जी, मेरे वालों सारे स्रोतों नूं भी सत श्री अकाल। हां जी जी,
0: अवतार सिंह पाश भाजी हुण एक आधुनिक पंजाबी कविता दे विच एक बागी कवि कह लो, कहिंदे हुंदे ने कि बगावत दी कविता अमर हो जांदी है पर बगावत करन वाला कवि अमर नहीं रह सकदा। खैर उहदे भी एक वखरे कारण सीगे, और जिस किस्म दे नाल अवतार सिंह पाश दी कलम लिख रही सी लागत नहीं रहा सीगा कि बहुता चेर कढ़न नहीं लगे, पर की बनी सी उह कहानी उहनां दी जिंदगी ते उहनां दे कतल तक की पूरी जे गल तुसीं साडे नाल करो। तो नाल ही अवतार सिंह पाश का जन्म 9 सितंबर नूं है, सो उस संदर्भ दे विच असीं एक देश पंजाब की गल कीचे दे विच अज गल करन लगे हैं। तो जिहड़ी कविता दे नाल मैं शुरुआत की सी, मैं इस करके की क्योंकि आपां जिस बैकग्राउंड दे विचों हैगे जर्नलिज़म दे विचों, तो उहदे चों इह निकल के जो सामने आती है तो यही कहती है कि अज भी इन्ने चिर बाद भी वह लगभग अद्धी सदी के बाद भी ये जिहड़ी कविता हैगी है वह उस ही कॉन्टैक्सट दे विच गल करती है कि मीडिया हाउसिस या उन्हां दे विच कीती जांदी गल किन्नी क जायज़ और किन्नी क जिहड़ी हैगी है सरकार दे सरकार दा डैमेज ना होवे उसनू कंट्रोल करके वह खबरां किवें लिखिया जांदियां ने, किस तरीके दे नाल घड़ियां जांदियां ने। और ये सिर्फ भारत की गल नहीं, हिंदुस्तान की गल नहीं है, तो पूरी दुनिया भर के इदा ही होंदा। हाँ जे एक्सट्रीमिस्ट कंट्रियां ने जिथे डेमोक्रेसी नहीं हैगी उत्थे तां वक्री ओ कहानी है, पर अवतार सिंह पाश किन्ना क ढुकदा हैगा अज दे संदर्भ दे विच, अज जदों मीडिया की गल आती है, लिटरेचर की गल आती है, खुल के गल कहण की गल आती है, और क्यों उन्हूं बागी कवि कह के सद्या जांदा।
1: बिल्कुल जिहड़ी तुहाडी इह गल इह असल विच गल आपां इत्थों शुरू करदे हां जिथे तुसीं छड्डी है गल कि अवतार सिंह संधु ते पाश किवें बणदा है, ते फिर पाश जिहड़ा हैगा इक भाषा दा इक खेमे दा इक जिहड़ा हैगा एह कह सकदे खेते दा कवि ना होके पूरी दुनिया दा कवि

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्त लागू।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
3: SMG।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानूं वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: रंग रंगीली दुनिया दा है चार दिना दा मेला, सोने मुख तो ला उदासी भुल के जगत चमेला। ओए चिंता चिखा समान दोस्तो रोग ना डाडा लाइए, जल्ली रब तो डर के रहिए, आओ नचिए गाइए।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तो आडे नाल।

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनॉन्ग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर।

जो तुद पावै साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, करिए शब्द सच्ची टक।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेक पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया।

कालांकान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदि श्रेतरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभ जेश के आगा जिकर्म के आभा

तंग कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैब हिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन रजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम है गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निसाग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वगवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईश है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमीकुलुमा है करीमल कुमाल है के जुरुजमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे।

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा मैं कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया वो जो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रक्षा राख लो।

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतनी पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंत दिन हर

0: एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। हे गुरु रामदास आखिरकार तेरी शरण में आके टह पया एक भी साडे विच गुण कोई नहीं ते हुण कृपा करिया जे शरण प्यां दी तुसी लाज रख लिया जे ते सच जाणियो जेड़ा गुरु रामदास दे दर ते टह पैंदा ना मेरा गुरु रामदास ओनू अपने हिरदे नाल ला लैंदा गले नाल ला लैंदा अपने सीने नाल ला के प्यार दिंदे जेड़ा भी गुरु रामदास दे चरणा ते टह पैंदा सानू किते टहण दी जाच आ जाए अरदास बेनती पातशाह जी दे चरणा विच करी किवें जिवें भगत रविदास जी पै करदे ने इह सानू एक बेनती करन दी जाच पै दसदे ने कि इस तरह उस मालक दे चरणा अगे आपां टहणा है उहदी चरण धूड़ी बनना है तो आओ बड़े ही प्यार दे नाल सरवण करिए जी
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी भगत।

0: आखो सतनाम श्री वाहे, फिर उच्चारण करिए जी सतनाम साहिब जी। तनासरी राग अंदर भगत रविदास जी बख्शिश पे करदे ने और आरंभ विच मंगल है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, वो अद्वितीय है, उहदे वर्गा होर कोई भी नहीं है। परमात्मा सब कुछ बनांदा है, पर कहिंदे ने कुछ ऐसा है जिहड़ा परमात्मा नहीं बना सकदा। कहिंदे ने हां वो अपने वर्गा दूजा परमात्मा नहीं बना सकदा, वो इको ही है, वो अद्वितीय है। गुण यह होर ना ही कोई, इहदा मतलब यह ना समझो कि इको ही गुण है होर कोई नहीं, नहीं। एक बहुत वड्डा गुण है परमात्मा दा कि उहदे वर्गा होर है ही कोई नहीं। एक वारी आखो सतनाम श्री वाहे। गुण यह होर ना ही कोई, ना को होआ ना को होए, ना कोई होया ते ना कोई हो ही सकदा उहदे वर्गा। वो अद्वितीय है, पर उहदी प्राप्ति किवें हुंदी है? पातशाह जी कहिंदे ने सतगुर प्रसाद, सतगुरु दी कृपा द्वारा, प्रसाद बख्शिश द्वारा उस परमात्मा दे नाल सांझ पाई जा सकदी है। तो भगत जी इस पावन शब्द अंदर बख्शिश करदे ने, हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे। कहिंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, मेरे वर्गा कमजोर कोई नहीं, मेरे वर्गा अंदरों खाली कोई नहीं। ये गल समझ जदों पै जांदी है ना बंदे नूं कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं ते अंदरों खाली हाँ, प्यारे फिर ही वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास। जिन्ना चिर होमे ते हंकार दा अंदर वासा है उन्ना चिर निरंकार नहीं। पर जदों इन्नी को निम्रता आ जाए कि हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, मेरे वर्गा कमजोर कोई नहीं, ते तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। वेखो किड्डा दयालु है, वो किड्डा कृपालु है, वो ते भलियां नूं भी देई जांदा ते बुरियां नूं भी देई जांदा। जेड़े पत्थरां दे विच बैठे ने ना, सैल पत्थर मैं जंतो पाए ताका रिजक आगे कर धरिया, उन्हां दी भी रोजी उस परमात्मा ने पहले ही पैदा कर दिती। बड़ा ही दयालु है, हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे। हे वाहिगुरु जी, मेरा होर की परतावा लेना है, तुसी मेरी होर प्रीख्या ना लवो। मेरे वर्गा कमजोर कोई नहीं, जे मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं है। बचनी तोर मोर मन मान, जन का पूरन दीजे, ते कृपा करो। बचनी तोर मोर मन मान, जन को पूरन दीजे। फिर ने मेनू इन्ना कु टका दे दियो, मेरे अंदर इन्ना कु सिदक दे दियो कि जेडे तुहाडे कीते हुए बचन ने उन्ना दे नाल मेरा मन किते मन जाए। मानी ते नहीं ना जी मनदा, जे मन मनदा होवे ते फिर सिख गुरु दी गल क्यों ना मने। साडा मन ते होर गल्लां नूं मनण लई तैयार है, गुरु दी गल मनण वास्ते तैयार कोई नहीं। गुरु दे बचना नूं मनण लई तैयार नहीं, असीं गुरु नूं आपणी मनानी चाहने आ पर गुरु दी नहीं मननी चाहते। मनुख दा इक सुभा है, ये गुरु नूं आपणी ते मनाएगा पर गुरु दी मनण लई तैयार नहीं। जे किते जो गुरु ने किया, गुरु कहा साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। जिस दिन ए अवस्था बन गई कि जो गुरु ने वचन कीता है, जो गुरु ने आख्या है, उस नूं अपने हिरदे विच पूर्ण तौर ते वसाणा है, और मन लेना कि जो गुरु ने आख्या वो सत है, जो वाहिगुरु दे बचन ने वो त्रैकाल सत ने। मेरा मन किते मन जाए, मनुख पाठ करदा भी है, बाणी सुनदा भी है, पर बदकिस्मती है कि मन करके मनदा नहीं। जे मन लईए तो साडा पार उतारा हो जाए। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हे वाहिगुरु मेरे अंदर नू सिदक दे दे, मेरे अंदर नू टका दे दे कि तेरे बचना नू पूरन तौर ते मेरा मन मन लवे, तेरे बचन किसी तरह मन लवे, जन को पूरन दीजे, पूरन तौर ते मेरे अंदर नू टका बख्शिश कर दियो। हां बल बल जाओ रमैया कारण। हे परिपूर्ण परमात्मा, हे सारी सृष्टि दी करता, हे हर थां ते रमे होए परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे तो बलहार जांदा हां, मैं तेरे तो सदके जांदा हां। कारण कवन अबोल, की कारण है कि तू मेरे नाल गल नहीं करदा, मेरे नाल बोलदा नहीं, अबोल तो भाव है बोलदा नहीं, की कारण है, मेरे विच केड़ी होर, मेरे च खोट है कि तुसी मेरे नाल गल नहीं करदे हो। रहाओ इत्थे टिकना है, भाव ए रहाओ दियां पंक्तियां ने कि उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सांझ पानी है, पर पैनी किवें है, ओदी गल नूं मन के, ओदे बोलां नूं अपने हिरदे विच वसा के। जे ओदे बोल हिरदे विच ना वसे, ओदी गल नूं हिरदे विच थां ना दित्ती, ते गल नहीं जे बननी। बापू नूं जिन्ना मर्जी प्यार करी जाओ ना, पर जे बापू दी गल ही ना कोई मन्ने, बापू आखे कुछ होर ते बच्चा करे कुछ होर, ते बापू दे नाल सांझ थोड़ी पैनी है, दिली सांझ नहीं पै सकती। धी मां दी गल नूं मन लवे ते मां दा प्यार धी दे नाल कुदरती है, पर जे गल मन्नी नहीं गई ते फिर गल नहीं जे बनदी। उस परमात्मा दे बोल जेड़े ने उन्हां नूं आपणे हिरदे विच थां देंगे, फिर परमात्मा दी साडे नाल गलबात हुंदी है।
1: बहुत जन्म बिछड़े थे मादा, एहो जन्म तुम्हारे लेखे।
0: ये परिपूर्ण परमात्मा माधो दुपाव है माया दा पति परमात्मा। ये परमात्मा असी किते आज दे नहीं, पता नहीं किन्ने कु जन्मां दे असी तेरे नाल विछड़ चुके हैं। किरत कर्म के बिछड़े कार किरपा मेलो राम। हे परमात्मा असी आपने कर्मा करके तेरे नाल विछड़ गए, और पता नहीं किन्निया कु जूनिया दे विच असी पटक पटक दे रहे हैं। ऐसे घर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कबीर साहब जी कहिंदे ने जदो परमात्मा दे गर्भ विच वासा होया, जदों परमात्मा दे नाल सांझ पई, ते फिर इस गल दी समझ पै गई कि आ जेड़े ने ना रिश्ते नाते ते बड़ी वारी बने ने, बड़ी वारी घर बने, बड़ी वारी मैं किसे दा बाप बनिया, कई वारी ओ मेरे बाप बने, बड़े रिश्ते नाते बनदे रहे। कहिंदे ने इसे तरह ही भगत रविदास जी कहिंदे ने कि बड़े जन्म हो गए ने, परमात्मा तेरे नाल विछड़े होए आ, हुण इस गल दी समझ पै गई है। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। बड़े चिरां बाद ए दे ही मिली, फिर कादे वास्ते, उस परमात्मा नूं मिलन वास्ते। पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, तेरी वारी, तेनू मौका मिलिया उस परमात्मा नूं मिलन वास्ते। पर जे इत्थे आके फिर खुंझ गए ना, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएंदा, फिर जन्म मरण दे गेड़ विच प्यार रहेगा, फिर दुख भोगदा ही रहेगा। तो गुरु सवारियो ए मनुखा दे मिलिए चिरंकाल पाई दुर लभ दे। बड़े चिरां बाद पर नाम निहूनी होई खे, कहिंदे ने नाम तो बगैर ए फिर मिट्टी मिट्टी विच ही मिल गई। जिथे पहुंचना सी उथे पहुंच ना सकिया, क्यों? क्योंकि परमात्मा नाल सांझ ना पई, उहदे नाम नाल ए टुट गया। इस करके कहिंदे ने असी पता नहीं किन्ने कु जन्मां दे विछड़े आ। पर मैं एक बेनती करा, ए भी कोई भागां वाला जिन्हों इस गल की समझ पैंदी कि मैं विछड़िया, नहीं तो बहुतियां नूं ते पता ही नहीं कि असी विछड़े होए। इस गल की समझ पैंदी, देखो आपां कहिंदे आ एक है संसारी बंदा जिहड़ा केवल साडे वर्गा प्रशादा पानी छकण आया, उन्हें प्रशादा पानी छकिया, बच्चों का पालन पोषण किया, बस संसार तो रुखसत हो गया। यह काम पशु पंछी भी सारे करते हैं। एक है संसारी, दूजा है जग्यासु, जिदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई, जिन्हों समझ पै गई कि मेरी मंजिल यह नहीं, मेरी मंजिल तो कोई होर है, मैं आया तो किसी होर काम वास्ते सी, मैं तो परमात्मा नूं मिलन वास्ते आया सी। उहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई, उन्हू कहिंदे ने जग्यासु। फिर तीजे नंबर ते जदों यह पता लगे कि मैं तो फलाने थां पहुंचना है, फिर वह पता की करदा है, फिर वह साधन जटाने शुरू कर दिंदा है, फिर वह साधना शुरू कर दिंदा है। जदों साधना शुरू कीती ते उन्हू नाम दिता साधु। ते सच जाणियो साधना करदिया करदिया जिहड़ा फिर मंजिल ते पहुंच जांदा ना, उन्हू कहिंदे ने संत। एक वारी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पिछाणी। कहिंदे ने हुण तो पछाण ही नहीं आउंदी राम कौन है ते कबीर कौन है। परमात्मा ने हुण अपना रूप ही बना लिया। पर जदां चिर मनुख नूं इह नहीं पता कि मैं विछड़िया होया परमात्मा नाल, उन्ना चिर मनुख यतन भी नहीं करता, केवल प्रशादे पानी विच सीमित रह जांदा है। जिहदे ते किरपा हुंदी है सत्संग विच क्यों आउणा है, तां कि सानू इत्थे ही समझ पैंदी कि असी किस काम वास्ते आए हां, असी परमात्मा नूं मिलण वास्ते आए हां। परमात्मा दा एक दिन रूप होणा है और सारयां दा डेस्टिनेशन जिहड़ा ना उह इक्को ही है। मानयोग मस्कीन साहब जी नूं एक वारी एक ने सवाल कीता फोन ते, फोन करके पुछदा कहिंदा कि मस्कीन जी मैनू पता लग्या कि तुसी बंदे दा भविख दस दिंदे हो। मस्कीन जी कहन लगे हां मैं दस दिंदा। कहन लगे फिर मैनू टाइम दिओ मैं कदों आवां तुहाडे कोल। मस्कीन जी कहिंदे ने की काहदे वास्ते? कहन लगे जी मैं भी अपना भविख जानना। तो कहन लगे तेनू आउण दी की लोड़ है, मैं तेनू हुणे ही दस दिंदा। और केवल तेरा ही नहीं ये सारयां दा ही है। पुछया की? कहन लगे सारयां दा भविख है परमात्मा दा रूप होना। आए हैं परमात्मा दा रूप होने वास्ते, साड़ी मंजिल साड़ा डेस्टिनेशन परमात्मा दा रूप होना है। पर प्यारियो इत्थे मनुख वकारां दे विच इन्ना कु फस जांदा है कि निरंकार दा चेता ही भुल जांदा है। इत्थे ते दात प्यारी विसरिया दातारा, सानू दातां इन्नियां प्यारियां लगण लग पैंदियां कि उस दाते दा फिर चेता ही नहीं आउंदा। इस करके एक अरदास है, एक तरला है भगत रविदास जी बख्शिश पै करदे ने कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लिखे। ए सारा जन्म जेड़ा नम परमात्मा ए मैं तेरे लिखे लाया, कृपा कर के इस जन्म विच हुण मेरे ते कृपा कर दे, मेरे ते बख्शिश कर दे कि मेरा बार बार दे जन्म मरण दा गेड़ जेड़ा ना ओ मिट जाए, ते मैनू अपने चरणा दी प्रीति बख्शिश कर दियो। लोग कोई राज भाग दे पिछे दौड़दा, अपना ईमान भी दा ते ला दिंदा कि मैनू राज भाग चाहिदा, उहदे वास्ते झूठ भी बड़ा बोलिया जांदा है। पर मैं एक बेनती करा, जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, वह कहिंदे ने राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। हे वाहिगुरु, तेरे चरणा कमला दे नाल मेरी किते प्रीत बन जाए, मेरा किते प्यार बन जाए, मेनू होर राज भाग दी कोई लोड़ नहीं, मेनू मुक्ति दी भी लोड़ नहीं, बस तेरे चरणा दी प्रीति किते मिल जाए, उहदे चरणा दे नाल साडा किते प्यार बन जाए। इस करके भगत रविदास जी कहिंदे ने कि ए सारा जन्म जेड़ा है ना ए परमात्मा मैं तेरे लेखे लाया, बस कृपा कर दे कि मेनू अपने चरणा दी प्रीति बख्शिश कर दे, मेरे ते एक बारी ए कृपा करो कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म जेड़ा ए मैं तुहाडे लेखे लाया है।
1: कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे।
0: ए परिपूर्ण परमात्मा मैं ए आस दे नाल जी रहा हां केड़ा कि तेरा किसे तरह दीदार हो जाए, तेरा दर्शन किसे तरह हो जाए। गुरु सवारियो आम असी वेखदे हां, असी गुरु घरां विच भी आउंदे हां, आके कोई मनुख धन मंगदा है, कोई तंदुरुस्ती मंगदा है, कोई धीआं पुत्र मंगदा है, कोई होर पदार्थ मंगदा है, पर कोई भागा वाला जेड़ा आके ए आखदा होवे कि हे परिपूर्ण परमात्मा कृपा कर मेरी झोली च नाम पा दे, मैनू अपने चरणा दी प्रीति बख्शिश कर दे, ए ते कोई भागा वाला ही है ना जेड़ा मंगदा होवे। तो गुरु सवारियो साहिब जी बाणी विच कहिंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल कुछ सिख आए ते आके ना ते बेनती करदे ने, पातशाह कहिंदे ने भाई की याचना लेके आए हो? एक कहिंदा है महाराज कृपा कर दियो चार पदार्थ झोली विच पा दियो, ते मैं एक बेनती करा जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास। याद रखियो जो भी गुरु को मंगी है ना मेरा गुरु देंदा है, किसे गल दा घाटा ही नहीं, उत्थे झोलियां भर के जांदा है, पर ए मंग वखो वखरी है पी असी मंगना की है, मंगना नहीं किसे विरले नूं आउंदा है, मंगना मांगण नीका हर जस गुर ते मंगना, कोई विरला ही जेड़ा हरी जस मंगदा होवे उस परमात्मा को। कह लगे जी चार पदार्थ झोली विच पा दे, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। दूजा कहिंदा है कि संसार विच शोभा होनी चाहिदी, जे को अपनी शोभा लोर है साध संग ए होमै छोर है, जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, जिन्हों परमात्मा दे दर्शना दी प्यास पैदा हो गई है, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। कहिंदे ने जिदे अंदर दर्शना दी प्यास पैदा हो जाए ना मैं उदे तो बलहार जाना, मैं उदे तो सदके जाना हाँ, पर वो भागा वाले ने जिन्ना नू ए प्यास पैदा हो गई। दर्शन प्यासी दिन सरात चितो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। मेरे सतगुरु जी बख्शिश कर देने खांब।

गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज तुसी रोज सरवण कर रहे हो कि जदों तीर्थां ते गए मनुखता दा उधार करन वास्ते तीर्थां ते गए क्यों कि गुरु नानक दे घर दी एक प्रथा है एक मर्यादा है कि जिथे बहुत सारे लोग कठे हुए होण उथे जाना ते उथे जाके सच दा उपदेश दृढ़ करवाना। असीं वेखदे ना गुरु नानक दे पातशाह हरिद्वार चले गए ते उथे मेला सी कुंभ दा मेला लग्या होया जदों उथे गए ते उथे जाके ते वेख्या कि लोग चढ़दे पासे नूं पाणी पै सुटदे ने गुरु नानक ने लहिंदे पासे सुटना शुरू कर दिता। पर ये नहीं पुछया कि तुसी की करदे हो जां तुसी गलत करदे हो नहीं ढंग ऐसा सी लहिंदे पासे पानी सुटना शुरू कर दिता। उन्होंने वेख्या ते कहन लगे कि भले पुरखा ये की पै करना ते पातशाह कहिंदे ने तुसी दसो हां तुसी की करदे हो। कहन लगे जी असी ते पितरां नूं पानी दिंदे आ सूरज नूं पानी दिंदे ते सतगुरु जी कहिंदे ने मेरी खेती ते सुकदी सी मैं कहा मैं भी दे लवां तुहाडी खेती कित्थे है उन्हां कहा तलवंडी। कहन लगे एड्डी दूर पानी किवें चला जाएगा ते गुरु नानक कहिंदे ने जे तुहाडा करोड़ां मील दूर सूरज तक अपड़ जाएगा ना ते मेरियां 250-300 मील ही ने बहुता दूर नहीं उत्थे भी पहुंच जाएगा। एक ढंग सी समझाण दा उपदेश ऐसा दिता हैरान हो गए। इसे तरह ही जदों वेख्या गुरु अमरदास पातशाह जी ने कि जिथे बहुत सारे लोग इकट्ठे होए ने उत्थे गए ये गुरु रामदास पातशाह जी महाराज जी की पावन बाणी तुखारी राग अंदर और इस अंदर इस शंत दे रूप विच है। गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश पै करदे ने कि जदों तीसरे स्थान ते तृतीया आए सुरसरी ते कौतक चलत पाया उच्च एक अजीब कौतक सुरसरी है गंगा गंगा दे तट ते गए और उच्च एक बड़ा वड्डा एक कौतक वेख्या। मैं एक बेनती करनी चाहना कि भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहिंदे ने कि चरणों दुख लै सुरसरी कहिंदे ने कि ये बावन दे चरणा दे विच्चों निकली ते ये धरती दे उत्ते आई सुरसरी भाव गंगा इस करके गंगा नूं बड़ी पवित्र नदी मन्या जांदा। 900 नदी 968 तीर्थ अंग समाई ते लोई परवान होए महादेव लै सीस चढ़ाई कहिंदे ने महादेव ने अपने सिर दे विच इहनूं टका लिया गंगा नूं देवी देव सरेव दे जय जयकार वड्डी वड्याई देवी देवते जेड़े ने वह भी सारे उस नूं सरेवदे ने उहदा सिमरन करदे ने उहनूं याद करदे ने हर वेले। पर एक गल जिहड़ी है बड़ी कमाल दी भाई साहिब भाई गुरदास जिहड़े मूल रूप विच गल करना चाहुंदे ने वो कहिंदे ने सण गंगा कहिंदे ने गंगा समेत जिहड़ी गंगा बैकुंठ छड के धरती ते आई सी सण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई कहिंदे ने के गंगा समेत लखां ही बैकुंठ होण ते उन्हां लखां बैकुंठां दे स्वामी समाधियां ला ला के बैठे होण साधु धूड़ दुलंब है। पर कहिंदे ने जिहड़ी गुरु दी चरण धूड़ी है ना उहदे बराबर नहीं जे पहुंच सकदे कोई गुरु दी चरण धूड़ी दे बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। इस करके सिख गुरु दी चरण धूड़ी ले लवे ते समझो कि ठाठा तीर्थां दा इशनान हो गया जिहड़ा सतसंग विच आ गया ठाठा तीर्थां दा उहदा इशनान हो जांदा है। इस करके गुरु सवारियो गुरु दी चरण धूड़ी दी महानता है तो सतगुरु जी गुरु अमरदास पातशाह जी जदों पहुंचे ते की वेख्या कि बहुत सारी लुकाई कठी हुई है और जेड़े आउंदे ने उन्हां ते मसूल लाया जांदा है उन्हां दे उत्ते टैक्स लाया जांदा सी टैक्स वाले भी बैठे ने सारयां दे उत्ते उन्हां ने टैक्स लाना शुरू कर दिता। पर इत्थे

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अपने गोलोक धाम से इस धरती पर हम सभी का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए, जिसे हम सब बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले से पता होती है? नहीं ना? हाँ, आजकल मेडिकल साइंस आपको एक टेंटेटिव डेट तो बता ही सकती है, परंतु एकदम एक्यूरेट डेट एंड टाइम वो भी नहीं। किंतु भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय पहले से ही भगवान निर्धारित कर चुके थे। वो तिथि है भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि यानी 12 बजे। ये ऐसा समय या तिथि थी जब सभी ग्रह नक्षत्र अपनी अशुभ स्थिति में थे, किंतु यहां भगवान अवतरित होकर संपूर्ण धरती को ये बता देते हैं कि जहां श्री कृष्ण हो वहां विपरीत स्थिति में भी सब कुछ मंगल और शुभ हो जाता है। भगवान ने अपने जन्म के साथ ही बता दिया मनुष्यों को। जो ग्रह नक्षत्र उल्टे भी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होने से वो भी शुभ हो जाते हैं। इसी बात पर बोलिए नंद के लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद नंद के घर आनंद भयो, हमारे नन्हे बालक का नामकरण कैसे हुआ, किसने किया इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: मैनू अपनी नवी दुकान ले प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300 1516 16 quicksignage.com.au।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। भगवान के वैसे तो हजारों नाम हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नामों का वर्णन मिलता है, किंतु आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की जिसे सुनते ही मन में एक प्यारे से नन्हे से बालक की तस्वीर आ जाती है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर खुशियां छा गई। थोड़े दिन पहले बलराम ने जन्म लिया था और अब कृष्ण, तो दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए नंद बाबा ने महान ऋषि गर्ग मुनि को बुलाया। गर्ग मुनि जब नंद बाबा के घर पहुंचे तो दोनों बालकों को देखा तो उन्होंने उनके बारे में बहुत सुंदर बातें बताई। उन्होंने बताया कि नंद बाबा का यह बालक साधारण नहीं है, यह पहले भी अलग अलग रूपों में प्रकट हो चुके हैं और अब बड़े भाई का नाम होगा बलराम और दूसरे बालक का नाम है कृष्ण। हमारे नंद के लाला का नाम पड़ गया कृष्ण। अब सोचिए कृष्ण नाम का मतलब क्या है, क्या अर्थ बताया गर्ग मुनि ने, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। गर्ग मुनि द्वारा नामकरण हुआ नंद के लाला का कृष्ण, यानी जो सबको अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, सर्व आकर्षक कृष्ण। कृष्ण अपने सुंदर रूप से आकर्षित करते हैं, अपनी मुस्कान से आकर्षित करते हैं, अपनी वंशी की धुन से आकर्षित करते हैं, अपनी बाल लीलाओं से आकर्षित करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने नाम से आकर्षित करते हैं। इसीलिए वह कहलाते हैं कृष्ण। किंतु उनको तो कई नाम से उनके हर गुण लीला के अनुसार ब्रज में भक्त पुकारते हैं। कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपाल, कोई गोविंद, कोई श्याम सुंदर, कोई माखन चोर, कोई नंदलाल, कोई यशोदा नंदन, तो कोई प्यार से बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण पुकारता है। भगवान के नाम बहुत हैं और भक्त अपनी भावना के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किंतु कलयुग में भगवान को पुकारने का सबसे सरल तरीका क्या है? वो सरल तरीका है हरि नाम। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है हरि के पवित्र नाम का कीर्तन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कृष्ण आपके जीवन में आए, अगर चाहते हैं कि मन को शांति मिले, अगर चाहते हैं कि कृष्ण से आपका रिश्ता और मजबूत हो जाए, तो आज से एक काम जरूर कीजिए, कृष्ण को पुकारिए। किसी मंदिर में, घर में, सुबह शाम बस प्रेम से उनका नाम लीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। क्योंकि हम कृष्ण को पुकारते हैं और कृष्ण अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। तो आज आप भी प्रेम से पुकारिए, हे कृष्ण मेरे जीवन में भी आ जाइए। और कौन जाने, जिस कृष्ण को आप पुकार रहे हैं वही कृष्ण आपको अपनी ओर खींच रहे हो। आज पूरे परिवार के साथ जन्माष्टमी की कथा सुनिए, जन्माष्टमी का पर्व बनाइए, मंदिर जाइए और प्रेम से बोलिए नंद के लाल की जय, यशोदा मैया की जय, गोकुल धाम की जय, ब्रज धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। और मुझे दीजिए फिलहाल आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

रेडियो हांजी 1674 ते तुहाडा दुबारा तो स्वागत है। मैं हाँ कृष्णा ते अज आपां इकट्ठे हो गए हैं जी। हांजी मेलबर्न दी एक होर नवी पेशकश कड़ी लैके ऑन अ फ्राइडे। एक तो पहले थानू सारिआं नूं कृष्ण जन्माष्टमी दीआं बहुत बहुत मुबारक। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ते जो जो बहुत चाह नाल मनांदे ने उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक जी। तो दूजे पासे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा जहा टेक्निकल ग्लिच सीगा मेरे को, लाफ्टर थेरेपी वाले बच्चों वास्ते है कि हल्का जहा टेक्निकल ग्लिच सीगा, हुण ओह सॉर्ट हो गया। सो जे तुसीं कॉल करना चाहते हो दोबारा तो थोनू नंबर पता 044-717-1674। माई फॉल्ट माई बूबू रियली सॉरी गाइस, तो तुसीं कर सकते हो। तो चलो आओ जी वेखते हैं कि क्या सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द वैदर, वैदर इट्स गुड और नॉट। बाकी जी कहें कि सितंबर तो मौसम बदल जाता है। आई एम फेयरली न्यू टू दिस कंट्री, पर कंट्री फिर भी सही दस रही है क्योंकि जी आज मेलबर्न वैसे तो जो सवेरे उठे हैं तो सर्दी ने दोबारा दस्तक दी कि भाई नहीं मैं नहीं छेती जाती काका, तू जो करना कर ला, आई एम हेयर। असी सच्चियां मुहब्बत पुगावांगे, तेनों इदा नहीं छड़ांगे, क्योंकि अज मेलबर्न का जी 7 डिग्री वैदर दिखा रहा। फील्स लाइक दे अंदर अगेन 5 डिग्री आ, मिनीम 8 तक रहेगा जी, तो आ कि मैथ होया भाई, तो मैक्सीम जाएगा 18 तक। बाकी धुप ही रहेगी सारा दिन, कहते हल्का जहा झड़ हो सकता, विंडी रहेगा, पर अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी प्लेजेंट। सो भाई मुबारक मेलबर्न वालों, थानू पता कभी कभी हों कि धुप वगैरह वेखन मिले, उपरों प्लेजेंट रहेगा 12-13 डिग्री। सो यस इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे टूडे, उपरों फ्राइडे, क्या बातें ने। अगों जी सिडनी सामना करना पेगा, फिलहाल मौसम है 14 डिग्री, इस तो डाउन नहीं जाएगा, तो मैक्सीम रहेगा 20 डिग्री तक। तो उधर ही जे आप एडिलेड की गल कर लिए, तो एडिलेड का भी यही सूरत हाल है। एडिलेड भी जी 13 डिग्री है इस वक्त, मिनिमम रह चुका तड़के तड़के 9 डिग्री, पर दोबारा नहीं जाता उन्ना डाउन, तो 21 तक रहेगा मैक्सीम। कैनबरा नाल भी यही है जी, कैनबरा फिलहाल अपना मिनीमम जो अज का रहेगा तापमान उसे बैठा पे विच इस 5 डिग्री, तो अज बहुत विंडी है जी। स्पैशली उन्होंने कहा है कि कैनबरा वाले थोड़ा ध्यान ध्यून रखियो, कपड़े कपड़े सुकने ना पायो, पता नहीं गुआढ़ियों के भी ना जान उड़ के गांह के गांह तुरंत कितने। तो मैक्सीम जाएगा जी 18 तक। होबार्ट 9 डिग्री है जी, जो मैक्सीम जाएगा 15 तक। तो डार्विन है जी हमेशा ही तरह गर्मा गर्म ताज़ा तरार 24 डिग्री, तो जो 33 तक भी जा सकता। ओके ओके भाई ध्यान रखो, इन्नी ज़्यादा भी गर्मी मैनू इन्नी नहीं पसंद वैसे गर्मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद इंडिया तो आते हुए हर बंदे नू ज़्यादा चा सर्दियों का ही रहा। सो हुण भी इस तरह हुंदा कि जदों अक्तूबर नवंबर दिसंबर इत्थे आंदी है ना, तो माइंड स्विच ऑन हुंदा कि सर्दी वाला, फिर कहने कि नहीं भरा सर्दी तो हुण ही इन्नी ज़्यादा वेख के हटे हैं, होर किन्नी सर्दी वेखनी है। टाइम लग जाता आदमी नू अपना थोड़ा जिहा सैटलमेंट करन लई। आई एम श्योर थोड़े नाल भी इस तरह हुंदा रहा होएगा अपने टाइम ते। ते जी गल करिए मैट्रो दी, तो मैट्रो वाले कहिंदे कि अज जी फ्राइडे आ, अज तां आपां बहुत नौटी आ क्योंकि अज क्रेगीबन लाइन जी फिलहाल कैंसलेशनस तो निकलती पई आ। सो यह क्रेगीबन लाइन कैंसलेशन ते आ, अपफील्ड लाइन ते डिलेस चलदे ने, रेस कोर्स लाइन जिस तरह आपां वेख ही रहे काफ़ी समय तो कि इत्थे कोई सर्विस है ही नहीं हुण, तो सर्विस चेंज करनी पेगी थानू क्रैनबर्न च भी, पैकनम च भी, तो सनबरी लाइन आ तीनों लाइन च। उधर फ्रैंकस्टन वाली लाइन तो टाटा बाय बाय करके कहते नहीं भाई नहीं अज नहीं काम करना, जो मर्जी कर लो। वेरीबी लाइन, विलियम्स टाउन लाइन, ये भी माइनर डिलेज दे नाल चल तो रही ने, पर देर आर माइनर डिलेज। अगेन जो तुसी ए वाले रूट्स लेने हो, लैन लगे हो, तो सलाह यही रहेगी कि तुसी अपने लैवल ते भी अपने जिन्ने भी ऐप्स हुंदियां ने है ना, उन्हां दा हेल्प लैके उन्हां नूं ही यूज़ करके अगे वधियो। ते होर जे आपां ट्रैफिक वल नूं झात मारीए, ते ट्रैफिक इज़ एक तो परसनल तौर ते दस देना जी, कालडर फ्रीवे वाले पासे जे तुसी जा रहे हो ते काफ़ी ज़्यादा उत्थे कंजेशन सीगा क्योंकि अपना उत्थे कोलिजन हो गई सी, पर कामकार चलता पे ही उत्थे। सो इदा का कोई चक्कर नहीं है, मेरे ख्याल हुण तक ठीक हो गया होएगा, मैनू भी उत्थे आए हुण कुछ 1.25 घंटा हो गया।

इज़ राइट एंड वॉट इज़ रोंग, पर फिलहाल जो है सो है वो थानू असी दस दिता जी कि 68.11 तुसी बहुत ही टेंशन आ लो, तुसी साडे नाल इत्थे तक बनो कि 68.11 ठीक है जी। तो हुण आपां रुख करदे हां जी मैसेजेस वल। तो मैसेजेस दे अंदर सब तो पहला जी मान साहब मेलबर्न वाले भेजदे ने कि रेडियो हंज की टीम नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, तुहाडी शानदार ते सुंदर सवेर की कामना करदे हां ते सारे स्रोतियां दा दिन खुशहाल बनाउण दा धन्नवाद करदे हां जी। उहदे वास्ते रो हैप्पी वाला शुक्रवार जी, शुक्रवार है तो हैप्पी वाला ही होएगा जी। पिंड डीन साइड तो मैसेज करदे ने, असीं वी तुहानूं पिंड सेंट ऑलबन तो कह दिंदे हां जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तो उधरों जी संदीप सिंह रखड़ा जी भी सत श्री अकाल भेजदे ने। सारिआं लई वाहिगुरू अगे मेहर भरिया हथ रगन की अरदास करदे ने ते कहिंदे ने ड्राई सेफली जी, बिल्कुल एबसोल्यूटली राइट। सेखो साहब भी गुड मॉर्निंग भेजदे ने सारिआं नूं। उधरों धुन्ना जुलर मोगे वाले भी लवजोत धुन्ना जी सत श्री अकाल सारिआं नूं भेजदे ने ते कहिंदे ने कि सरबत दे भले की अरदास करदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप देओल जी भी सत श्री अकाल भेजदे ने, कहिंदे ने कि अज दा दिन सारिआं दा बहुत बहुत सोहणा होवे जी वुलगुलगा तों, बहुत खूबसूरत जी। तो हर वार की तरह इस बार भी गुरविंदर संधु जी देसी महीने की सांझ पाते हैं साढ़े नाल अज है जी 19 भादों शुक्रवार 4 सितंबर कृष्ण जन्म अष्टमी जी, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू लॉर्ड कृष्णा, हाथी घोड़ा पाल की जय नहीं है लाल की। तो इधरों शिवानी गर्ग जी भी सारे हांजी परिवार को सत श्री अकाल भेजते हैं, सत श्री अकाल जी। इकबाल सैनी जी भी सारे सत श्री अकाल भेजते हैं। तो करण के पी जी भी भेजते हैं कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, राधे राधे जी जी, राधे राधे जी, थानू भी बहुत बहुत मुबारक हो जन्माष्टमी दियाँ। तो उधरों रणजीत सिंह ढिल्लों जी भी सत श्री अकाल भेजते हैं सारियां, तो अरदास करते हैं कि सारा का दिन वधिया वधिया घेंट घेंट होवे टू वुंबा तो बल्ले, क्या बात है। अच्छा वैसे इत्थे दे एरियाज़ दे नाम की परसनैलिटी किन्नी है, मैनू बहुत वधिया लगता नाम टू वुंबा वुलगुलगा वरमबुल, क्या बात है। मतलब बंदा कहिंदा आए हैं जी कि तो इत्थों ही इत्थों ही, मतलब कोई एवं छोटा मोटा एरिया नहीं है, यस है पूरी है। तो उधरों जतेंद्र कौर जी भी सारिआं नूं गुड मॉर्निंग भेजदे ने ते हैव अ नाइस डे भेजदे ने। तो सानूं बड़ा प्यारा जिहा वाहिगुरू तेरा शुक्र है दा शेयर चैट तो भेजा होया तस्वीर भी भेजदे ने, थैंक यू जी थैंक यू सो मच, वेरी नाइस कलर ऑफ दैट, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तो इस तरह जी इधरों जसवाल साहब हर वार की तरह अज भी प्यारा जिहा एक विचार भेजने कि जिंदगी एक वारी ही मिलन वाला तोहफा है, इसलिए इस नूं व्यर्थ ना गवाओ। शुभ सवेर जी, बिल्कुल मैनू अपनी 6वीं क्लास याद आ गई, पहली बार असैम्बली च बोलिया सीगा कि लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स, सेम टू सेम ओही वाली गल है देखो है। तो सुखदीप सिंह घुम्मन जी भी प्यार भरी सत श्री अकाल भेजते हैं सारे। तो इधरों जी 956 अमृतपाल जी भी सत श्री अकाल भेजते हैं सारे सारे रेडियो परिवार को। जतेंद्र नंदा जी भी प्यार भरी सत श्री अकाल भेजते हैं कलकालू तो। अजीत बुट्टर जी भी सानू भेजते हैं कॉफिया तो नाल चॉकलेट है कि यह की है, एक चॉकलेट आई है कॉफी नाल चॉकलेट हो गई सवेरे सवेरे, अजीत जी मेरी तो कॉफी अच्छी ठंडी हो गई पता नहीं किस तरह। सो चलो थोड़ी वर्चुअल कॉफी के नाल ही टाइम सार लें जी, थैंक यू सो मच। तो इधर रोहित जी भी सानू गुड मॉर्निंग भेजते हैं, गुरवीन जी भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं, प्रिया जी सत श्री अकाल भेजते हैं, कुलदीप सिंह प्रिया अमित ते शाइन वालों थैंक यू सो मच। इधर गुरनिशान वालों भी आंदा जी मैसेज कि सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, हर रोज़ की तरह बहुत ही सोहना शब्द कीर्तन जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी। रिचर्ड जी खतरनाक जी तस्वीर भेजते हैं तो कहते हैं कि डियर गॉड थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप टूडे, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, प्लीज़ गाइड माई स्टेप्स, काम माई वरीज एंड फिल माई हार्ट विद योर पीस, हेल्प मी टू बी काइंड ग्रेटफुल एंड टू स्प्रैड लव वेयर एवर आई गो जी। बिल्कुल यही हर बंदे दे अगे हर बंदे नूं यही रब अगे अरदास करनी चाहिए थैंक यू। तो नाल बड़ा प्यारा जिहा पप्पी है ये, इस फोटो दे अंदर मैनू याद नहीं आ रहा है कि कार्टून करैक्टर है बट आई कांट मैनू याद नहीं आ पा रहा। इधरों जी रशपाल सिंह डारी जी ते कमलजीत कौर डारी जी भी सत श्री अकाल भेजते हैं सारिआं नूं, सारिआं दे वधिया वधिया दिन होवे उसकी मनोकामना करते हैं। तो मन साहब सानू एडीलेड तो बहुत प्यारी प्यारी समाइलियां दे नाल भेजते हैं सत श्री अकाल, शुभ सवेर,
ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच किचन दस्ता।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा है,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार सी। हर घर ले जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करन ले हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ, जा 1800-181-2271 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लो अधिकारत।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
5: टेंशन निरी टेंशन।
6: की होया?
5: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।

0: ला ला ला ला ला, क्या बात है यार। गाना जेड़ा बना तना सिंह साहब, तुसी पास हो यार। वेरी गुड वेरी गुड। रेडियो हाँ जी 1674 एम ते थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ कृष्णा, एंड समा हो चुका लाफ्टर थेरेपी दा। अपने चेहरे ते मुस्कान लेके आंदा, बच्चों के वधिया वधिया जोक्स बुचारता, बोलियां नू सुनन दा ते उन्हां नू एप्रीशिएट करन दा, ते मेरे नाल हसन लई हसी ठिठोली लगान लई लाफ्टर दे ब्रांड एम्बेसडर बाय यूनेस्को, UN, WHO, ऑस्ट्रेलियाई सरकार, भारतीय सरकार, पाकिस्तानी सरकार, अफगानिस्तानी सरकार आ गए ने नोनिया जी।
1: थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। थैंक यू सारे जने दा बहुत बहुत शुक्रिया। अदाब सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सारे जने नु। उम्मीद करते हैं कि सारे अंदर फ्राइडे चढ़ चुका होगा और बहुत सोना चढ़ चुका होगा, और आस करते हैं कि बहुत सोना गुजरूगा भी, डेफिनेटली गुजरूगा, क्योंकि ऐसी आस्ते अरदास सिर्फ और सिर्फ बेहतर और बेहतर दी कीती है, और जो ही असं मांगते हैं उही सानू मिलता हुंदा जिंदगी दे विच। सो अज असी की करना, फ्राइडे इंजॉय करना है, इंजॉय करना मस्ती दे नाल, 100% मस्ती दे नाल, होर कुछ नहीं, जस्ट प्योर मस्ती, जिहड़ी कि असीं काम दे विच इन्ने बिजी हुंदे हुंदे थोड़े थोड़े भुलदे जांदे हां। सो वरी नहीं करना, क्योंकि साडे नाल आ चुके ने नोनिया पी दयाल, जो रख दी है सब दे हासिया दा ख्याल।
0: वाह वाह वाह
1: कृष्णा जी, आई टेस्ट यू अगेन।
0: मैं फिर भुल गया यार, मेरी टैगलाइन की है यार। चलो कोई नहीं, आज बना के जाऊंगा, टैगलाइन डन हो गया।
1: ऑलराइटी,
0: पर आपा पहले आपा ना बच्चा ने पूछा है कि टैगलाइन की रखी जा सकती है ना। गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। पर ऐसा करते हैं, पहला कॉलर लेने तेग नू, फिर तेग तो बाद मन्नत ते फतेह, तुसी रेडी रहो ते आज फिर कर दे गल्ला बात। हेलो तेग।
2: सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी,
0: सत श्री अकाल तेग जी, किवें हो
1: प्यारे साडे नूणे मूणे हो, की हाल चाल ने?
2: मैं बढ़िया, तोड़े की हाल चाल आ?
1: ओए बहुत बढ़िया, थोड़ी आवाज छुट गया जी, ओए भी बढ़िया हो रे।
0: तुसी सानू फोन कर लिया, साडा हाल बढ़िया हो गया, सही कि नहीं? तैयारी स्कूल दी?
2: हां जी
0: हां। आज तक सवेरे फोन बहुत मिस करते मैं तेग रहा हूँ, सॉरी तेग, मेरा ना सिस्टम नहीं सेट हो रहा सिगा
1: यार। कृष्णा बीरे नू ना फाइन लोना पड़ना है।
0: रियली सॉरी।
1: तगड़ा फाइन लावांगे यार।
0: बोला आएगा अगला फाइन वाला बंदा, तुसी हुने हुने ही तैयारी करा दो है।
1: आज कृष्णा होंगे सोने पुतू, फिर
2: आज मैं सुनाऊंगी एक बोली।
1: ओके
0: लियाओ जी लियाओ, फ्राइडे है तो बोली बनती है। फिर शांत होगी बोली।
2: मैं यार
0: बोली नहीं बोली
2: माता चले आप पर लूट कोई नहीं

0: लिपक दिया पर रस कोई नहीं
1: हाय
0: अड्डी दे गया पर बस कोई नहीं
1: यार इस तरह करो ना हुन अपने खुद दे ऑब्जर्वेशंस तो ना इहदे नाल ऐड करदे रहा करो फिर हर हर वीक ना तुसी नवा स्टैंजा बनाई है ना नवा नवा बनाया
0: हाँ जी मैं सेम सिंग ना पर एक और लाइन याद करनी है
2: ओके सिंगलो सिंगलो
1: वाह सिंगलो सिंगियो जरूर है जो तो रोड़ा ते जाऊंगे ना तुसी ता तुसी सी करना है आसे पासे वाले ना पीपला नू कि वो की कर दे या फिर तुसी ना माइये दे अंदर ऐड कर दाना या ते फिर तुसी फिर सिंगना है जो तुसी इत्थे आना है ठीक है
0: ठीक है
1: गुड डे गुड डे वेरी गुड डे ते अंबर गल कर दी है कि सुती हुंदी है
0: अंबर वेंसडे ते फ्राइडे नू गल कर दी है
1: ओ ते आज ते फिर साडी मतलब की मतलब
2: बारी
1: लग गई नहीं आज ते फ्राइडे है
2: यस
1: गल कर दी
0: हां जी
2: नहीं वेंसडे ते थर्सडे ये शी सेड ना
1: नहीं नहीं नहीं फ्राइडे क्या
2: फ्राइडे क्या
1: हां देखो
0: फ्राइडे हां जी फ्राइडे क्या
2: फ्राइडे नहीं किया
1: फ्राइडे क्या पता नहीं
0: फ्राइडे क्या सी
1: नोनिया आंटी लो ओल्ड हो गए ना उन्होंने
2: मेरी वाली साइड ते बोली दा हुंदा है
1: देख थोड़ा उच्ची बोलो आंटी ना थोड़े ओल्ड हो गया ना उन्होंने प्रॉपर समझा नहीं
0: वेंसडे ते फ्राइडे ओल्डी हुंदी आ
1: हां वेरी गुड
2: फ्राइडे ओके
1: वेरी गुड भाई उन्हें फिर पता ना फ्राइडे नु फन हुंदा ता आंदी है तई है आही चक्कर है आही गल
0: अंबर दा स्कूल हुंदा वेंसडे ते फ्राइडे ते अंबर नु वो वेक अप करना पैंदा
1: अंबर ना गल करो फिर
0: थैंक यू हैव अ नाइस डे अंबर ना भी गल कर लो अंकल जी सश्रीकाल आंटी जी
2: सश्रीकाल अंबर जी की हाल चाल
1: निक्की जी चिड़ी
2: ची ची
0: माटी माटी का
1: तुसी ठीक हो
2: ओ शो
1: शुक्र
2: परमात्मा थानू हमेशा ठीक रखे खुश रखे आज की सुनाओगे तुसी
0: हां जी माया
1: ओए ले आओ जी ले आओ
2: क्या बात मैं कदे नहीं सुनया माइया मेनू सुनाओ
0: दो पत्तर नारा दे सदी गले लंग माइया टुक टुट दी बारा दे
2: तेनू तेनू साडी गली लंग माइया अगे की सीगा
1: अगे की सीगा
0: टुक
1: दोबारा सुनच ही दसिया दुख टुटन बीमार स्कूल च फिर अज है फंक्शन करियो अज ते फ्राइडे है स्कूल अगले कॉलर लैन तुसी पाता मेरे ते फाइन ते अगला तैयार बैठा हुंदा ने ते पर्चा कढ लिया होना ते लो जी मन्नत एंड फते तुसी ऑन एयर हो
2: सत श्री अकाल जी
3: सत श्री अकाल
1: अंक वीरा भी ठीक है ते आंटी भी ठीक है बलकीरत वीरे ना हुना उस दिन मैं वीरा हुना जिस दिन नोनी आंटी हुना उस दिन तुसी अंकल कह लिया करो फिर फ्लो इजी रहिंदा ना थोड़ा फ्लो नहीं खराब करना है ना मेरा की है मैं भी कंफ्यूज ही चल रहा हूं तुसी भी कंफ्यूज रहो
2: देखो कंफ्यूजन ची सारा कुछ निकलता हुंदा
1: है ना
2: यस
1: सही गल है और सुनाओ मन्नत तैयारी शहरी स्कूल दी

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
2: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट, वैरवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर, रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिना विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स, अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300151616 quicksignage.com.au।
6: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Lion 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Lion 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स, कंडीशन अप्लाई।
7: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
8: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
8: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।

0: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
2: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट, वैरवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर, रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ले प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स, अपने बिजनेस नु चमकाओ। कॉल 1300151616 quicksignage.com.au।
6: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले ले है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स, कंडीशन अप्लाई।
7: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालों तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
8: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
8: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
10: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
11: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
10: फिर लवाइए किथों?
11: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
10: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।

0: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2 फोल्ड लैंडिंग।
2: अपने सपनों का

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
2: अपने सपनों का घर बनाए रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट, वैरवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर, रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
3: वाह,